कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु पंचांग राशिफल भू वर्तमान र भविष्य को पूरा जानकारी को लागि ज्योतिषाचार्य पंडित प्रेम प्रसाद सुवेदी को साथ में नेपाल भर एकै साथ प्रसारण हुने कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु सुन्न नभुल्नुहोला।

0: मेलाडु मायुका लागि त सुनसरी गाउँपालिका योमी मस्तर जरुरी सूचना जोर बेला खेमरी दे गरम ओबोटरी जेउ बेला सुनो भुरी कता ओचुरी जेउ आउ बेला क वन जंगल ल भे लागिने मस्त ज संभावना पाए आउ ये गिने प्राकृतिक सम्पदा र तक्षेप्त ज सक्षम नादे वातावरण मिलेने ल खेपा असर केने रि उमुल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज तानादे भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकेने सुनो नाखार नामे ल भे लागिने सज जिमी गिमी लापरवाही सुनो चाउसो खेलगेमा दुख जिनके कोठरे लगने लगी ना थी जन धने में खेता छिपी था उसको होकाई
1: ये छोटाने आला बोलना नेला की ने पूरा रंगे नौ पूरा आले चौसे खेल गिरी
0: बंजामल सर मेरा आज मेरी बाली एमएल ओ छोटाने लाली उसको कर पोतर राले पार जगे रहते ही
1: सलाई लाइटर सियाला मैं छोटाने चीज राले जब बंजारो यामा देने पोला गिने या इतने चीज रह गए थे बंजामल याल गिरवा भाई या
0: पिकनिक बन बोस बाको मैं छोटाने सूची
1: नान्थर नाम्लो लिजाउ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने हुने हालले च अनुगमन दिने व्यवस्था चौसन गिदुए
0: गेछो छामेला खोरेल चाउसी पोलिए होइदे तरिन गाई गेजम हेके लाइजु अब नजिरे बनाई गेम येल गेजम हेके नालाये औलेम नायो के नाइये
1: वन जंगल स जुडिसियो घेनबारी ल बाली नाली कुचिला चुली यात्रा र सताउसु छिनि ने चौसो सहिदे के खेले या
0: वन जंगल मेला दिगे नाइये ला दिखिने पार जना खर्ना नारे मिली देखो नहीं सानो जन नहीं के सही
1: बता सुचली जुर मिला को विजिन के कोटला ने के सतांगी ने हेनो के मचिन्नी ने चाउसो के सही है
0: ने ला दिने मिटाई गे मने गे बचिए सुनो औरुले मने गे बचिया
1: के सो थामला पोया लो ने ला गे उकिशन की ने गे छोटा ओडा कारे ले परहरी कारे ले सर सुनसरी गाउँ पालिका गाउँ कार्यपालिकाए तुम्ही कार्यालय ल खबर गिरिए
0: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा।